LG ले ले आयो नया LG Essential Series अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में LG LG लाइफ्स गुड।

मैं कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के, तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार।

लूंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, लिखो काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर नहीं तेरे।

0: गाड़ी मैं लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 तू होना जाइयो लेट पर।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

मैं तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है।

रिक्वेस्ट न कर नाची जा विरष्ट न कर पेशेंट हूँ तेरे हुसन का पेशेंस मेरी टेस्ट न कर डीजे आले गाना बजा दे जून सब भी कह रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है।

पटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी पटक लाए बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

ढंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

0: रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं?
1: बी ऑनेस्ट विद
0: एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है कर रहा है बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा एक एम्पायर होएगा तो उसको शूज के मिलेंगे.
2: मानेंगे

0: क्या, मेरे चिंता कम आया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या।
1: 101% आम बोलिए
2: माने के
0: Vivian Divine ने भी बोला था पार्टी में एमी वे पैसा कमाया क्या, 101 तक का तू खुद को बड़ा बोले मजाक है क्या, लेबल से आने के बाद तेरा काम बना लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या, बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या, साइन होना बुरा नहीं लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का, समझ में आया क्या,
3: क्या बोलने का बंटा। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है,
4: MC Sten।
3: हाँ।

0: और एमसी स्टैंड तू मेरे छाते पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में
1: आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के? आई लव जादू

0: के ना जूते पे, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजह तेरे भाई का।
1: मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नई दी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले, समझ में आया क्या?

0: समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर।
1: बैठला बोल डाल
2: माने के
1: ये डिस्क गाना नहीं है, जिस जिसको लग रहा है ये डिस्क गाना है, ये डिस्क गाना नहीं है, सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपन, वो दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना।
0: समझ में आया क्या?

0: कर दे, इतने भी अच्छे नहीं है। पैसा वैसे सब ओके ओके है, पर दिल बड़ा ग्रैंड है। ऊंची ऊंची गए धार लेने, लौड़ा खुद एक ब्रांड है। तूने भी शहर है सर पे उठाया, रब ने छुट्टियां लेके बेबी तुझको बनाया। कैसे बताऊं तुझसे दूर कैसे रह रहा हूं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि
1: तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर।

0: अक्सिजन उत्पादन गर्ने अक्सिजन प्लान्ट तथा पीसीआर सहितको प्रयोगशाला जस्ता सुविधा
1: सुन्नु भए त
2: मजाले सुने। अब बिरामी लिएर जिल्ला अस्पताल रामेछापतिर कुदे।
3: जिल्ला अस्पताल रामेछाप फोन नम्बर 0848 40 0114 पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 48 54 114 वेबसाइट रामेछाप हस्पिटल .bagmati.gov.np।